0: के हवाई जहाज से बने पराए, हवाई जहाज से बने पराए।
1: Radio X. Es ist 12 Uhr.